दारू भर लो मटरों में, बाड़ियों में, पब्बों में, चीट बुझे जब मित्रों की सब झूम उठेंगे क्लबों में। दारू भर लो मटरों में, बाड़ियों में, पब्बों में, चीट बुझे जब मित्रों की सब झूम उठेंगे क्लबों में।

0: प्लेटमा पेट भरिने बोनस चाउचाउ।
1: पोखरा नुडल्स प्रालीको उत्पादन बोनस चाउचाउको आधिकारिक विक्रेता थापा सप्लायर्स, शुक्ला गण्डकी साथ सेरा, प्रोप्राइटर राजबहादुर थापा, मोबाइल 98560 2279।
2: प्रणाम, अभी अपने सुनतनी रेडियो ढोरबराही 103.8 मेगाहर्ट्ज़ अंतर मन की आवाज।

0: This is Radio Dhorbarahi, 103.8 MHz.
1: Station 1. Studio Sanchit.
2: Aile, Diusoko Ek Bajyo.
3: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चांदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस्ट चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साठ फेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165 95301
4: Cameras, standby. Reload music.
5: Nepali chalchitra ka git sangeet haru.